0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसीं इह प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तों सुन रहे हो। यह प्रोग्राम गुरद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तों प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: 交过。嗯，
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। सोदारू राग सा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदार तेरा केहा सो कर केहा, जित वह सर्व संभाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावणहारे। केते तेरे राग परिचों कही है, केते तेरे गावणहारे। गावण तुदनो पवन पाणी बैसंतर, गावै राजा धर्मद्वारी। गावण तुदनो चैत गोबत लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावण तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावण तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देव ध्यान दर नाले। गावण तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावण तुदनो साध विचारे। गावण तुदनो जति सती संतोखी, गावण तुदनो वीर करारे। गावण तुदनो पंडित पढ़न रखी सर, युग युग वेदा नाले। गावण तुदनो मोहनी आमन मोहन, सुरग मश पाया ले। गावण तुदनो रतन पाए तेरे, अठसठ तीरथ नाले। गावण तुदनो जोध महाबल सूरा, गावण तुदनो खाणी चारे। गावण तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन, से मैं चेतना आवन। नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच, साहेब साचा साची नाई। है पी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर, जिनसी माया जिन हो पाई। कर कर देखा कीता अपना, ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई। सो पातशाह शाह पात साहेब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला। सोना वड्डा आखै सब कोए, केवट वड्डा डीठा होए। कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोई ना जाने तेरा केता, के बड़ चीरा राव। सब सुरती मैल सुरत कमाई, सब कीमत मैल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गौर गुरहाई, कहन ना जाई तेरी तलबड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया। तुद वैण उस दी कनै ना पाईया, कर्म मिलै नाहीं ठाक रहाईया। आखण वाला क्या बेचारा, सिबती भरे तेरे भंडारा। जिस तू मेह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आस्था महला पहला। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊं। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाई चलिया दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचा नाए राव। साचे नाम की तलवड़ियाई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए। ना ओह मरै न होवै सोग, देंदा रहे न चूकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना कोआ ना कोए। ਜੇ ਬੜੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਲ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਹ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਗਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧਨ ਧਨ ਸਤਸੰਗਤ

सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव हैं जो सेव तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव हैं हर त्याव तुद जी, से जान जुग मैं सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी, तन तूटी जमकी फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तनका पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करहें हर पूजा जी, तप तप हैं जपें बेअंता। तेरे अनेक पढ़ें बहु स्मृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख परंपर करता जी, तुद जेवड़ वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई। तुद आपे भाव है सोई वरत जी, तू आपे करहे सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आस्था महला चौथा। तू करता सचार मैडा साई, जो तुम पावे सोई थीसी। जो तू देहे सोई हम पाई राव। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, बजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वरना कोए। तू कर कर वेख जान सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवर डै पहिले निवासा, पाणी पावक तनह किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तै डूबी अले। मान एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलया राव। ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत

0: संतन की मन होए रवाना,
1: संतन की मन होए रवाना, संतन की मन होए रवाना।
0: तो साढ़े जन्म पता नहीं, सानू कोई पता नहीं, पर महाराज सच्चे पातशाह जिस तरीके नाल समझा रहे ने, इस तो पता लगता है। भगता ने भी किया, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, किसी बहुत पुन फल करके मनुखा जन्म लगता, पर बिरथा जात अब वेके, बिना विचार तो ये जन्म बिरथा ही जाते, क्योंकि जन्म नु असी किवें बतीत करते हाँ, उदे तो ही सब अनुमान लाया जाता। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध,

0: अंज किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तन्नास, नावें तौले उबे सा, दसवें दद्दा हुआ सुआ। इनू दस हिस्सों में वंड के समझा, सारी आरवल सारी उम्र इवें बीत गई। दस बालतन बीस रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पुर होए पचासी पग खिसे, सठी के बोडे पायावे, सत्तर का मतहीन अस्सियां का व्यवहार न पावे, नवे का सहजा सही मूल न जाने अपबल। पातशाह ने हर पक्ष तो सानू अगवाई की है, चानन बख्शिया है, ते अखीर ते आख्या जे हाली भी किसे तो नहीं सौरिया, नहीं जीवन विच कोई तब्दीली आई, ते आओ उस समर्थ दे चरणा विच अरदास करिए। मैं कहांगा अपने वलों, तुसी कहोगे अपने वलों। हे वाहिगुरु, खात पीत खेलत हस्त, खात पीत खेलत हस्त,
1: खात पीत खेलत हस्त।

0: किसी गायक हो, सिंगर हो, ऑफकोर्स थोड़ी देर से प्लान होगा कि मैं एक एल्बम भी करना केवल जी एल्बम करने चाहते हो कि आज दे आयदा रोग सड़क पर कर रहे हैं या धार्मिक या सूफी या गजला दी क्योंकि तुम एक वर्सटाइल सिंगर हो की चाहोगे कि मैं कितना भी एल्बम पहला करा।
1: So, मैं प्लानिंग चाह रही है कि सब तो पहला धार्मिक एल्बम
0: जी जी जी
1: के रब के नाम नाल
0: वेरी नाइस
1: शुरुआत की थी अभी बहुत ही चंगा है।
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो धार्मिक लाइन वाल में ज्यादा
0: अच्छा जी मतलब कुछ चंगा मैटर लग रहे होंगे कि चलो
1: हाँ जी
0: बढ़िया मैटर मिल जाए क्योंकि लिखारी भी बहुत ने जी संगीतकार बहुत ने गायक बहुत लिखारी भी बहुत बात बात रखे ने जी
1: बहुत बहुत
0: तो चाहे होंगे भी
1: अच्छा मैटर मिल जाए तो उसमें जल्द से जल्द रिकॉर्ड
0: जी जी।

अग मचदी कहर दियां लाटां ए लम्मियां सिखनी दियां वाटां कुर्बानी दे पुंज धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते विराजमान हन तत्ता रेता उन्हां दे शीस ते पै रहा है पर सतगुर मुखू फरमाउंदे हन तेरा भाणा मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे।

वाहिगुरु जी की फतेह। सात संगत जी, सिखी योदे बलकारा फिर लख सरदारा दा कारवां है। सिदक सबर संतोख तलवार दस्तार ककार तो उपजिया खालसा। ओस निरंकार दा ओट आसरा लेके हर मैदान फतेह प्राप्त करदा है।

0: एक प्रसिद्ध सूफी फकीर जनाब शेख सादी साहब कहंदे ने गमे रोजी मखुर, रोजी दा गम ना कर, रिजक दा गम ना कर, गमे रोजी मखुर मजन और आके दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा, दे तेरा जन्म बाद दे छोया मां दे अस्तन पहले ही बन गया, दुध पहले ही बन गया। रामकली राग रेच गुरु अर्जन देव जी महाराज हू बहु इसी ढंग दा फरमान फरमांदे ने, प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनू साबन सूद, प्रथमे माखन पहले मां दे थन ने दुध पिछे, रोजी दे सोमे पहले ही बना दिते ने, तेरा जन्म होया है तेरे जन्म तो पहले भी दुध मौजूद है, रोजी दे सोमे मां दे अस्थन मौजूद ने, इत्थों क्यों नहीं प्रेरणा लेना। भगत धन्ना जी एक दिन सुते सिद्ध जंगल दे चटेल दे हुए निकल रहे ने एक पगडंडी तो आप दे पैरां नाल एक मिट्टी का बड़ा सख्त ढेला ठोकर खा गया, वो टूट गया। उस टूटे ढेले विच की देख दिन धन्ना जी एक कीड़ा है और उस कीड़े दे मुंह विच देर का पत्ता है, वो टुक टुक के खाई जा रही है। आपकी अगम्य दृष्टि आपकी अध्यात्मी सुरत एकदम विस्माद दे मंडलों च हो गई। आप कहने पाषाण की गुपत होए रहता तांचो मार्ग नाई कहे धन्ना पूरन ताहूं को मत रे दिए डराने, कोई रस्ता नहीं कोई मार्ग नहीं इस गुप्त रेंदे कीड़े नूं गुप्त रूप दे रिजक पहुंच गया, रोजी पहुंच गई है। मनुख दे ज़ेहन दिते हर वक्त जड़ा बोझ ते तनाव है ते रोजी दा है, कहिंदे ने इह तनाव पंछियां दे जगत विच नहीं है, पशुआं दे जगत विच नहीं है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ते ऐसा फरमान करदे ने, परिंद है ना गिर है जर, पंछियां कोल ना जर है ते ना ही कोई सोने गोदाम ते मकान ने जिहदे च ओह कोई अन्न दा चुगे दाने दा स्टाक कर लै इकट्ठा कर लै। परिंद है ना गिर है जर, दरख्त आब आस कर देहंद सोही, एक तू ही एक तू ही।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0: ਪਰਿੰਦ ਹੈ ਨਾ ਗਿਰ ਹੈ ਜ਼ਰ, ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ ਬੇਹੰਦ ਸੋਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਪੰਛੀ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕੱਲ

एक फकीर मस्त फकीर ख्वाजा मईउद्दीन भी चिश्ती की दरगाह के बाहर बैठा, हथ फैला के इच्छा मंग रहा सी, लेकिन है किसे रंग विच रंग मंग रहा सी

संत ने कह दिता कोई गल नहीं फकीर संग बाकी चार अंगुलियां कल दो रोटियां लेने उन्हें चौनी भी सुटी दो रोटियां ही संत दे हाथ से थमा दी आखिया मैं ना शुक्रे दे पैसे दी रोटियां नहीं जिस खुदा ने मैनू अज दिता है तो मैंने कल भी देगा तू ना शुक्र तेन ईश्वर का बोध नहीं अकाल पुरख का बोध नहीं जिन्हें अज दिता है वो कल भी देगा जिसने अज तेन भेजे है वो कल किसी होर भेजेगा मेरा तो यह यकीन है मेरा तो यह भरोसा है पर तू साध बाने होके भी भरोसे तो ही विश्वास तो ही पूर्ण निश्चय तो ही है दोलिया है दरअसल जैसे जैसे कोई सिमरन करता है परमात्मा से भरोसा जमदा है तो जब परमात्मा से भरोसा जमदा है तो कल की फिक्र मिटती है मनुख अज में ही चला अज दे ही जीता है और उसनु पता है कि अमिट है परमात्मा इस वास्ते रोजी भी उसकी अमिट है देंदा रहेगा हाँ देंदियां थकदा भी नहीं कई दफा मनुख कुछ वस्तु देन लग पैंदा है तो देंदियां ही थक जाता है पर शायद कहने वो तो ऐसा दाता है देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगन करे।

इसकी मूल पंक्ति है, नानक मति मिथ्या कर्म सचा निसा, सारी सोचनी व्यर्थ, सारी मत व्यर्थ, सारियां तदबीरां बेमैनी ने, बस इक्को ही है, खास ओ है प्रभु की बख्शिश, उदी रहमत, उदी जो रहमत है, उदी जो बख्शिश है, उसकी बख्शिश का जो मत्थे पे निशान है, बस यही महान, बाकी मत, बाकी सोचनी व्यर्थ है। भाव ऐसा सोच, ऐसी प्रार्थना करे कि उसकी बख्शिश हो, ते बख्शिश का बकायदा निशान पै जाता है, बख्शिश का बकायदा परवाना मिलता है, भाव बख्शिश गुज्जी चिट्ठी नहीं जाती। जितना वड्डा वो दाता है और वो प्रगट है, उसकी दात भी प्रगट होगी, मत्था दस देंदा किस बंदे को नाम है, किस को ज्ञान है, किस को गुण है, किस को कला है, बुझी छुपी गल नहीं रही। तो साहब इतने फरमान करते हैं, उसकी बख्शिश का जोड़ा परवाना है, उसकी बख्शिश का जोड़ा निशाना है, बस वही सच है, वही महान है, बाकी के सोचनी मिथ्या है, व्यर्थ है, झूठ है। बाकी केड़ी सोचने, ईश्वर प्राप्ति लई होर केड़ी सोचने, तो उसका सतगुर जिक्र करते ने, लख नेकियां चंगियां, लख पुन्ना परमा, एक नेकी नहीं लखां तरह दियां नेकियां कीतियां जा और लखां तरह दे पुन कीते जा, ऐसे पुन जो जगत विच प्रमाण, ऐसे पुन जिनू संसार मान देंगे, जिनू संसार बकायदा मन में पूजता है। महाराज कहते हैं, अपनी मत के मुताबिक अगर इस तरह दियां अनंत नेकियां कीतियां जान, अनंत पुन कीते जान, ते पुन ते नेकियां करके जगत विच बंदा प्रवान भी हो जाए, कबूल भी हो जाए, भाव लोकी कहें बड़ा धर्मात्मा, बड़ा नेक है, बड़ा पुनीत है। लेकिन साहब कहते ने, अगर प्रार्थना नाल नहीं है, नेकियां कर रहे है, लेकिन अंदरों जोदड़ी नहीं कहे प्रभु तू बख्शिश कर, तेरे नाम का जो रस है, तो मेरी नेकियां नाल नहीं मिलेगा, तेरी बख्शिश नाल मिलेगा, मेरे पुन नाल नहीं मिलेगा, तेरी बख्शिश नाल मिलेगा। अगर मेरे पुन नाल नाम मिल सकता है, मेरे पुन नाल परमात्मा मिल सकता है, तो मेरा मुल, तो परमात्मा का मुल मेरा कर्म है, तो नाम का मुल मेरा कीता होया पुन है, कोई भी पुन परमात्मा का मुल नहीं है, कोई भी कीतियां हुई नेकियां ईश्वर का मुल नहीं है। वरना ऐसा होंदा कि मनुख जिन्हिया मिथियां वह नेकियां करके परमात्मा नू प्राप्त कर लेंदा, जिने मिथे पुन करके परमात्मा नू प्राप्त कर लेंदा, लखां तरह के बंदे लखां तरह के पुन कर रहे हैं, पर मनुख दे कोल परमात्मा नहीं दिखाई देता, लखां तरह के नेक बंदे लखां तरह दियां नेकियां कर रहे हैं संसार विच, लेकिन उन्हां कोल कोई मस्ती होवे, खुमारी होवे, सुरूर होवे, नाम दा रस होवे, ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि नेकियां ना कीतियां जान, पुन ना कीते जान, नहीं, नेकियां प्रभु दा मुल नहीं है, नेकियां करदिया करदिया अंदर यह जज्बा पैदा करना है कि मेरियां कीतियां हुई नेकियां परमात्मा का मुल नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति होंगी है परमात्मा की बख्शिश नाल, उसकी रहमत नाल, कीते हुए पुन नाल नहीं, कीतियां हुई नेकियां नाल नहीं। वरना जितने शरीफ ने ते पुनीत बंदे ने उन्हां दे कोल ही परमात्मा होना चाहिदा सी। दरअसल पुन करन दा ते नेकियां करन दा वास्तविक लाभ तो यही है कि अंदरों प्रार्थना फुटे, अंदरों अरदास निकले कि हे प्रभु, मेरियां कीतियां हुई नेकियां, मेरे कीते हुए पुन दान, ये तेरी प्राप्ति का

जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिस बोलत मुख पवित्र होए।

गोविंद मिलन की एह तेरी बढ़िया अवर काज तेरे किसे ना काम मिल साध संगत भज के।

कानपुर से बहादुर साहेब कानपुर से बहादुर साहेब कानपुर से बहादुर साहेब कानपुर से बहादुर साहेब संतन बाबा दीप सिंह की संतन बाबा दीप सिंह की संतन बाबा दीप सिंह जी संतन बाबा दीप सिंह जी संतन पाई मनी सिंह जी संतन पाई मनी सिंह जी संतन पाई संतन पाई मनी सिंह जी संतन पाई मनी सिंह जी संतन पाई तारू सिंह जी संतन पाई तारू सिंह जी संतन पाई तारू सिंह जी संतन पाई तारू सिंह जी संतन बाबा अजीत सिंह जी संतन बाबा जवाहर सिंह जी संतन बाबा संतन बाबा अजीत सिंह जी संतन बाबा

फिरत फिरत प्रभ आया प्रयात शरणाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई। हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाई। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै शिव दुख संबंधी नूर अरसों पुरसों चटिया।

ब्रह्मांड से है, खलखंड से है, प्रति पर है, करुणा कर है, जपा जपा थपा थप है, कृता कृता मृत अमृत है, अमृता मृत है, करुणा कृता कृता कृता तरणी द्रत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृतं अकृता कृता मृत अमृत है, जपा कृता मृत अमृत है, नर नायक है, खलकायक है, विश्वम पर है, करुणालय है, निर्भनायक है, सर्वायक है, पवभंजन है, अर्गंजन है, हरिपतापन है, जप जापन है, अकलं करता सर्वकर्ता है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्म वास है, जस के जस के जस है, भुजंग प्रयाचंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज सिंह दाम सिंह शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादिंग भूते, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक भांके, पंखी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंखी त्रिकाले अनंगी कामे, एक श्री शांत अजय अलय पै वै पूजू नास गास गंज पंज लख बख गल दयाल लेख बेगल, अनाम काम गाहटा नाथि प्रमाथे योनि मोनि नरागे नरंगे न रूपे न रेखे, अगर्म परम गंज लेखे, भुजंग प्रयात शंभ, नमास्तुल प्रणामे समातुल प्रणाशे, गंजल नामे समातुल निवासे, नरकामंग प्रभूते समातुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग प्रभूते, सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी, ग्रीमल कलिंदा समाज तुल निवासी, जय बभूते जय ग्रीम, हरियंग हरियंग ग्रीमल रेम, चतर चक्र भारती चतर चक्र भुगते, स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते, दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सुरांग संगे भंगंग भूते, चतर चक्र भारती चतर चक्र भुगते, स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते, दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सुरांग संगे भंगंग भूते, चतुर्चक्रवर्ती

अवकाश मर्म जनाया अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी

बस मेरे प्यारे आज नेत्र पुनीत पै दर्श देखे माथे परो रवाल रस रस गुण

सूर शब्दम सुदर शब्दम प्राकृत सर्व शब्दम एक शब्दम जेको जाने भेव नानक ताका दास है सोई नरंजन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा तात्मा आत्मा बास देव जेको जाने भेव नानक ताका दास है सोई नरंजन देव महला पहला कुंभे बद्दा जल रे जल

शिव कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण। मलेई धान लै पुजे पुराण, वाख्या का कुत्ता बकरा खाना, चौंके ऊपर किसे न जाना। जेके चौंका कड़ी कार उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे वन साडा पिटे। तन फिटे फेड़ करें मन जूठे चुली प्रेम को नानक सच आईए।

0: नील वासन दे कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे बेदोश जार पड़े गुणे तिन जार विचार
1: पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मोह कांतर पाए पड़ सा

मथे टिका तेर धोती कसाई अग चुरी जगत कसाई नील वस्त्र पहरो प्रवान मले तान ले पूजे पान आप आख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार उपर बैठे आए कूड़ियार मत फिटे वे मत फिटे एवं साडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन झूठे चूरी भरेन कहो नानक सच।

0: सूतक एवनोत्तर ज्ञान उतर तोए महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक रखना पड़ते बर्तन रूप, कनी सूतक कन पहला इतवारी खाए, नानक आदमी मध्य जम।

0: पांड जमी है पांड जमी है पांड मंगण बिया पंड हो गए दोस्ती पंडो चल रहा पांड हुआ पंड वाली है पांड हुआ नार सो क्यों मंगा की है जित जमे राजान
1: पंडोए पंडे उपजे पंडे बाज न कोई नानक पंडे बार आए को सच्चा सोई जित मुख सदा सलाह।

सो करे जित सर जाए शुद्ध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कर्ता पुरुख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपं गुरप्रसाद मेहरबान साहिब मेहरबान

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार, श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लईं ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जस जेठा सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरियाए घर नाओ निधावै धाए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देवी चलाई तेग वाही देख के अनुट कीता, तिन्हां प्यारियां सुजियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तां नारियां नाल चरवाए गए, गुरुद्वारां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म ने हारिया सिखी केसां सुआसा संग निभाई, तिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू चेतावै, चेतावन का सदका सर्व सुख होवै, जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत, देख देख फतेह ब्रद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोलवाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, मिसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगो टल, धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत का रखा, वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ से सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाणा साहिब जी गुरुद्वारे गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दे खुले दर्शन दे दार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे रमाणिया दे माण, नेताणिया दे ताण, न्योटियां दी ओट, सच्चे पिता, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जी दे हजूर सोहणे पवन चरणा कमलों विच अरदास बेनती है, आप जी की बड़ी महान कृपा होई, महान कृपा सदका हफ्ता भरी समागमां दे विच संगतां ने हाजरियां भरियां, आप जी की अपार कृपा सदका अमृत वेल तो लैके हफ्ता भरी समागमां की आरंभता दे नाल आसा की वार दा कीर्तन होया, गुरबाणी के शब्द गुरमत दीआं विचारां होईआं, संगतां ने हाजरी भरी, पातशाह जी उस समुची सेवा करदिआं बाणी पढ़दिआं कीर्तन करदिआं विचारां करदिआं सतसंगत करदिआं होईआं बेअंत भुल्लां दी खिमा करनी, अगे तो समत बख्शनी, शुद्ध बाणी पढ़न का सेवा करन का बल बख्श के अपने चरणों के नाल जुड़ के रखना, संगतां की हाजरी प्रवान करनी, सभना के मन दिया शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरिया करके चढ़दियां कला वाला जीवन बख्शिश करना जीओ। बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे आप जी के पावन चरणों में प्रवान करनी, बाणी का भाव समूह संगतां के दासरियां के हिरदिआं ते वसाउण की कृपा करनी जी। सतगुरु पातशाह जी आप जी के पावन चरणों में अरदास बेनती, आप जी दर घर के प्रीतवान गुरदीश कौर सरां दे परिवार नूं चढ़दी कला नाम दीआं दातां बख्शिश करनियां सच्चे पातशाह जीओ। बीबी नरेंद्र कौर संधु दे परिवार नूं चढ़दी कला दी दात बख्शिश करनी पातशाह जीओ। परिवार वल्लों दोती दे आनंद कारजां दे शुकराने दी अरदास बेनती है, आप जी ने कारज रास कीते कोटान कोट धन्नवाद है जी। इसे तरह ही सारे परिवार विच प्यार सेवा एकता दी दात बख्शिश करनी, बच्चों चढ़दी कला दी दात बख्शिश करनी महाराज जीओ। भाई इंद्रपाल सिंह विरक परिवार को चढ़दी कला नाम दीआं दातां बख्श के चरणों के नाल जुड़ के रखना जीओ। भाई दलजीत सिंह अते मनदीप कौर के समूह परिवार को चढ़दी कला नाम दीआं दातां बख्शनियां, बच्चों नूं गुरबाणी की सोझी बख्शिश करनी वाहिगुरू जीओ। सुखबीर सिंह बुपारा परिवार को चढ़दी कला नाम दीआं दातां बख्शिश करनियां जीओ। भाई अमृतपाल सिंह के परिवार को चढ़दी कला नाम दीआं दातां बख्श के चरणों के नाल जुड़ के रखना। रवि अते रौचका सचदेवा जी के परिवार को चढ़दी कला नाम दीआं दातां बख्शनियां जीओ। आउण वाला समाप जी के हुक्म अंदर सुख का बतीत करना जी। आप जी दख्शिया दातों के विचों तिहावल कड़ाह प्रसाद की देख सज के हाजरा दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद कारी संगत विच वरते जो जी सके, आप जी का पावन पवित्र नाम जपे संगतां दी प्रेम भेटा प्रवान करके लेखे विच हाजरी लाउणी, सही प्यारे मेल करवाने जिन्हां मिलिया पवित्र नाम चेतावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। दोहरा आ गया पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म।

सतगुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नाही, अब तो ही मैं नाही। अनल आगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। जब हम होते तब तू नाही, अब तो ही मैं नाही। अनल आगम जैसे लहर मैं उदद,

जैसा मानिए होए ना तैसा रहाउ। नरपते एक सिंहासन सोया सुपने पया पेखारी अछत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज भयंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एकानेक स्वामी सब काट

करके मनना है। सतगुरु दी बाणी दे अंदर गुर कहे आ साकार कमावो दी सानू शिक्षा दृढ़ कराई गई है। क्योंकि गुरु दे बचना नू ही असल विच सतगुरु दी बाणी दे अंदरों सानू समझ आउंदी है।

खालसा जी और सब तो पहला शहीद पिता ने पुत्र शहीद पुत्र ने पिता मर्द मुजाहिद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बख्शिया पति का जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दसवें पिता सरबंस दे वार देना बुआ कदे आजादी का खुल दाना हिंद बाग सारा ही उजड़ जांदा बूटा धर्म वाला वधदा फुलदा ना हरा हैदरी हर थां झुलना सी निशान साहिब उच्चा कदे झुलदा ना भारत वासी ना कदे आजाद हुंदे जेकर खून पी जांदा डुलदा ना। हिंदुस्तान दी डुबदी बेड़ी दसम पातशाह ने बन्नी लाई पर एक ऐसा समा आया जदों मुगल हुकूमत ने 22 धार दे राजिया नाल मिलके आनंदपुर साहिब दे किले नूं घेरा पा लिया। 8 महीने किले नूं घेरा पिया रहा ते किले विचला सारा राशन पानी खत्म हो गया पर सादी हाथी जे जानवर भी मर गए। रुखां दे पत्ते टूट उके इन्हां ने अपने पेटां विच पा के जिंदगी दे 4 दिन गुजारन दा उद्यम कीता पर दरख्तां ने पत्ते भी किन्ना कु चिर चलदे। आखिर उस समा आ गया जदों कुछ सिंह कलगीधर पातशाह कोल आके कहन लगे महाराज जे तुसी नहीं जाना तां ना सही पर सानू जान दिओ। जिस तरह सिंह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पास आके बेनतियां कर रहे हैं उन्हां बोलां नूं अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दीवियां दा ढाडी जथा आपदी सेवा विच है।

कृत साहिब सिंह कह लगे महाराज जे तुसी नहीं जाना ता ना जाओ पर सानू जान दियो अति मजबूर हां। कलगीधर पातशाह कह लगे बेटा जे तुसी जाना ही चाहते हो ता जी सदके जाओ पर मैं अजे भी चाहता सी कि तुसी थोड़े दिन होर उड़ीक लेंगे। पर सिंह इन्ना घबरा चुके सन कि कह लगे नहीं महाराज सानू जान दियो। महाराज ने कहा ठीक है जे हुण तुसी जाना ही चाहते हो ता इस तरह करो कि एक कागज के टुकड़े ते ए लिख के दे जाओ कि अज तो तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे सिख नहीं। इत्थों तक कि कुछ सिंघां ने ता ए भी लिख के दे दिता कि ना तू साडा गुरु ते ना असी तेरे सिख। ए बेदावा लिख के सिंह आपो अपने घरां वल रवाना हो गए। टुटिया होयां दी भी कोई जिंदगी है, जुड़े रहने का नाम ही जिंदगी है। टुटना ते विछड़ा मौत दे बराबर है। इत्थों तक कि जिंदगी मौत नालों भी बेस्वाद हो जाती है। जिस वेले बेदावीए सिंह बेदावा देके अपने नगरी पहुंचे ता कौम दी अणखीली मां माता भागो दे अंदर अणक दा भांबड़ बल उठिया। सिंघां दी गैस नूं वंगारिया आ रिहा ते कहा जिस गुरु ने देश की आन ते शान लई अपना सरबंस वारन दा प्रण कीता होवे तुसी उस तों बेमुख होके परत आए हो। तुसी इंसान नहीं गिद्दर हो। जे तुसी गुरु दे नहीं बन सके तो साडे कदों बनोगे। आलो चूड़ियां पहन लवो, सिरा ते चुन्नियां लो ते बैठो घरां विच जंग लड़न वास्ते असी जांदियां हां। आओ बैठ जाओ पीढ़ियां उत्ते रंगले चरखे डाओ, सिरा दे उत्ते लवो दुपट्टे हत्थी चूड़ियां पावो, सांभो सारे बाल न्याणे घर दे कम चलाओ, आओ समय सतगुरु नूं छड्या कुछ तो सोच दौड़ाओ, फिर माझे दा नीवा कीता नक डोल मर जाओ, असि मरांगिया सिखी उत्तों जाना तुसी बचाओ, माता भागो दे तान्यां नूं ढाडी जता हे क्यों दसता है।

वजीर खान 8000 फौज नाल चढ़ाई करके आ रहा सी। वजीर खान नूं जदों इह खबर मिली कि गुरु जी नाल कोई खास लड़न वाली फौज नहीं, वजीर खान खुशी विच दीवाना हो गया ते अपनी फौज नूं कहन लगा कि अज असां सिंह दे पीर नूं जिउंदियां ही फड़ना है, तगड़े हो जाओ। इधर सिंह भी माता भागो ते भाई मान सिंह दी कमान हेठां वैरी दी उड़ीक विच तैयार बस तैयार बैठे सन। सिंघां ने मोर्चियां तों हटवी तंबू वांग अपने लीड़े खिलारे हुए सन ता जो प्रतीत होवे कि खालसा फौज अजे दूर है, पर आप राम मल के नेड़े बैठे हुए सन ते कुछ दोहे पासी झाड़ां विच लुके बैठे सन। तिन्ना पासियों तो लुकियां हुईयां फौजां ते दोहां धिरां ने मल मारन दी धार लई। कोई भी पिछे हटन वास्ते तैयार नहीं थी। लोथ ते लोथ चढ़ गई, लोह मिर्दे कान मच गए, किते सिर किते सड़ किते लत अते किते बाह, सारे हाल दुआई मच गई। इस अजीब दृश्य नूं ताड़ी जता एक छंद दे रूप विच हे

गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ये सारा नजारा उच्ची टिब्बी से बैठे देख रहे सन। गुरु महाराज मैदानी जंग विच आए, मेरा 5,000, मेरा 10,000, मेरा 20,000 से मेरा 50,000 केंद्र हुए। सतगुरु ने सिंघा ने सिर से प्यार दिता ते अंत मां सिंह जी पास पहुंचे। खूब सुते शहीदा दे सिरा उते जदो माही से देर प्यार लगी, महा सिंह से रोकना सिकदा सी देखण उसनु जदो दातार लगे। पर के बुल बेहोशी च कहन लगा, दिल विच तेरी तस्वीर ही वसी हुई है, मेरी जिंद शरीर चो निकलदी नहीं, जिंद

तक अगली टुकड़ी थी। कहने लगी कि सारा कुछ ऊंड है कि चल कि नहीं रहा है। कहने लगे चल इं रहा है क्योंकि कूड़ नूं कूड़ चंगा लगता है, कूड़ कूड़े नहीं हो लगता, सच नाल इं नहीं लगता। कूड़ जरा कूड़ विच जा बैठता है, सच विच नहीं पैंदा। गुरु ने बाणी विच आखिया कि जिहड़ा साकत पुरुष है ना, वो जे गुरुद्वारे आ भी जाए, गुरु के दरबार में आ भी जावे, उनका चेत नहीं लगता, आके बह जाए चेत नहीं लगता, अक जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी खुराक इतनी नहीं होती। गुरु कहते कूड़ का कूड़े नाल ही नहीं लगना है। अमली अमलियों में बड़े खुश रहते हैं, सोफिया में अमली मिलते अमलियां हो बहने इकट्ठे पैसा भाई गुरुदास जी ने आख्या। पर दूजे पासे कहने लगे बिच सच्चे कूड़ ना गड़ई मन वेखो कर निर्जात। कहन लगे मन नाल विचार के फैसला कर देख ले, कदी सच विच कूड़ का संबंध नहीं जुड़ता। बाकी गुरु ने बाणी भी चाखी है, कहने लगे जहां हंस सभा विचार कर देखें बगां नाल जोड़ कदे ना आवे। जो हंस सभा इकट्ठे होके बैठ के विचार करनगे ना, आ विच कौन बैठा है, एकदम पछाणिया जाएगा कि बगला बैठा है। कूड़ जेड़ा है वह सच विच नहीं बैठ सकता, उनका चित भी उसे नहीं लगता। दस दिन के बाहर हो भी जाए तो फिर मुड़ के कूड़ वाली दौड़ता, आखिर उसे थां जा बैंदा जिथों निकलिया हुआ, क्योंकि उनका संबंध ही होता। गुरु ने बाणी भी करती कूड़ कूड़ा नहीं हो लगता, उनका देह है, उनका रिश्ता है। कहने लगे जहां सभा विचार कर देखे बगा नाल जोड़ कदे ना आवे, हंसा हीरा मोती चुकना बग डिडा पालन जावे। दोवां दा फर्क, दोवां दा सुभाव दा फर्क। पर कहने लगे क्योंकि कूड़ जरा है उनका संबंध कूड़े नाल नहीं हो लगता, इसलिए क्योंकि उन्होंने सुभाव एक है, उन्हों दी आदतां एक हैं, कूड़ कूड़े नहीं हो लगता, तो मिल के फिर कूड़ नूं चलांदे ने। अज दे समाज विच की देख सकते, कूड़े चार दिन वक्त हो जाए मुड़ मिल पेंदे, मिल के कूड़ की जमात नूं चलांदे, सच उन्हां नूं चंगा नहीं लगता। जिस रिया करतार किस नाल कीते दोस्ती, कहने लगे भलिया तू तो सोच तू उन्हां कूड़िया नाल दोस्ती किवें पावेगा, उन्हें नाल संबंध किवें रखेगा, वह तो अज भी गए कल भी गए। किस नाल कीते दोस्ती, सब जग कूड़ का जग जिन्ना, कूड़ का पसारा हमेशा नहीं रहिंदा, जिवें जादूगर दे हाथ ते तली ते पिया होया रुपया हमेशा नहीं रहिंदा। जिहड़ा उस रुपए का सहारा लैंदा ना वह भुखा ही रहिंदा, जेड़ा उस रुपए के सहारे जीवन गुजारना चाहे वह गरीब ही रहता, क्योंकि उन्हें पता होगी जादूगर का रुपया है, असल रुपया नहीं। दुनिया चीज फिलहाल सच है, किस नाल की चाहे दोस्ती, सब जग चलनहार। पर अगले पास से एक गल का बड़ा खूबसूरत जोहर है, कहने लगे फिर भी कूड़ कूड़े नूं मिठा लगता है, माखी वर्गा शहद वर्गा मिठा लगता, कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर, हालांकि उस कूड़ ने पूरा दे पूर तबाह कर दिते होंगे। हम अगली तो पढ़ो, वो कूड़ संसार बनिया किवें, मैं हैरान होया कि दो दिन पहला इसे श्री आचार्य जी वार के दूजे श्लोक में आख रहे हैं सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लोग सच्चे आकार,
सच्चे तेरे करने शर्म बचाओ थे सब सच ऐसे आखिर कूड़ कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार ये फर्क क्यों लो इस सारी गल का इस सारे धर्म का जवाब एक लाइन विच मिल गया उसकी असली लाइन ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਚੁਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਮਤ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਚੁਕਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਲਸਫੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਾਤ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਧ ਬਾਜ ਰਾਸਤਾ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਜੇ ਤੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਧ ਬਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੂੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਲ ਸੱਚਾ ਦੀ ਬਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਧ ਬਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਜੇ ਸੱਚ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਭ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਲਓ ਆਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ

दिन रात चली जाए वो जो दान, मैनू प्रवान नहीं, रब नू भी प्रवान नहीं, क्योंकि दान नहीं, दान तो होंदा लोड़वंद नू, तरस करके किया जाता है। गुरु ने आख्या अकली साहब सरबीए, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीता दान पहला पछाण, ते किस जी ते केड़ी दया करनी है। लोड़वंद होने के बावजूद फिर भी तेनू विचारना पाएगा अकल नाल के इनकी ये लोड़ पूरी करनी है कि नहीं करनी। कोई भुखा तो दरवाजे से आ जाता है, रोटी खवाद लोड़वंद, कोई कम चाहता है पर कम अजे नहीं मिलता, हो सकता है दो चार दिन दस दिन तुहानू भी मदद करनी पै जाए करनी। पर जे तुहानू आखे भी मैंने पर रोज शराब पीन की आदत थी, मैं एक बोतल रोज शराब भी पीता सर, मैंने तीन दिन हो गए ने कारोबार तो नहीं, मैंने तीन दिन हो गए ने शराब पीते, इसलिए मेरे तक लोड़ है मैनू रोज शराब की बोतल भी दोगे दे देनी चाहिए। सोचना पड़ेगा, दान बड़ी शरण मंग रहा है, बड़ी शरण मंग रहा है, दया जाने जी की जी दया करनी है, जी तर्क जो तर्क करना है वो किथे करना है, तो कहो जहा करना है। एग्जाम्पल चंगी तरह लगनी कर वाली, लेकिन कई बार प्रेरणावाचक हो जाती है, बहुत ही पुरानी गल नहीं, सिर्फ पांच छह दिन पुरानी गल। करम चंद जी ने इतने आना अमृत वेह की शताब्दी से चढ़ाने वास्ते दस का पोतरा सवेरे सवेरे 18-19 साल की उम्र में चढ़ाने वास्ते स्टेशन से आया, स्टेशन से खड़े भावक मंगते तो होंगे ही नहीं सवेर सवेर के टाइम से प्लेटफॉर्म। एक मंगता आया उनकी दोनों लत्तां कोई नहीं, असली ध्यान नहीं किया, उस बच्चे ने पोतरे ने जेब विचों पांच का नोट कटिया, उन्होंने पांच छह दिन पलट गए। मैं सोचा भी चलो बच्चा है, मैं तो पहली बार देखे इनके मन में भावना से जागृत है, इन्हें समझ है कि लोड़बंदी सेवा करनी चाहिए, बच्चा है मेरे को जिन्हें को पंजा पंजा ने नोट दे बिल सन आप दोनों साथी कोर्स कर, मैं उनके हाथ पड़ा, मैं बेटे आप बड़ी चंगी जाने गए तेरे भाई। एक होर लोड़बंद आ गया, उनकी दोनों बाहां को नहीं सन, उन्हें अपनी केवल जेब वाल इशारा किया भी इन्हें पा दे, उन्हें पंजा नोट कटे उन्हें भी पा। उन्नी देर न एक बीबी बिल्कुल ठीक ठाक वेख दे भी सारे पांच पांच नोट रुपया दिता बच्चा, वह आ गई हूं मैं उन्होंने ना देन लगे आखा कि ना ना की, बच्चा कहता नहीं तेरे वास्ते नहीं तू कम कर सकनी। तू कम कर सकनी, तू किरत कर सकनी, तेरे वास्ते नहीं। मैं बड़ी खुश होगी, छाण से आई है ना कितने दया करनी है किथे तर्क करना, इसलिए जी की दया नू भी जानना है, दान पुन करना किवें है इस गल नू पछाणना है। अज के युग अंदर भी ते पुरातन युग अंदर भी जदों हिस्ट्री पढ़ने हैं इस दान पुन के नाम थले अनेक गुना हो रहे हैं, ते गुरु ने सिख्या दी कह लगे जे तू सच की सिक्ख्या से चलेगा तो तेरा दान पुन जिहड़ा है वह सुधरेगा, उनके सियानपक आएगी। दया जाने जी की किछ पुन दान करे, दान किसे नु की करना है। देखो जे दान का फर्क ना हो ते असी रोज अरदास विच की कहने, सिखा नु सिखी दान, हुण जिहड़ी चीज की लोड़ है वही करनी है। दया जाने जी की जिहड़ा सिखी तो भुलिया फिर उनके ते तरस करो, उन्हें सिखी वाल ला दो, जिहड़ा रोज केसां की बेअदबी करता है उनके ते तरस करो, अपना खजाना गवाई जाता है उन्होंने प्रेरणा दो तू आ केसा धारी हो, यह भी दान है। क्योंकि जे गुरु को असं रोज दान कह के मंगने ना सिखा नू, सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विखा दान, भरोसा दान, तो फिर आखने दाना सिरदान नाम दान।

हर प्रभ जाता दूर गुर के सिवा बिसरे क्यों मन रे जूर अपना अपना पछाण हर प्रभ जाता दूर गुर के सेवा विसरे क्यों मन रजूर मन मुख जन्म

शब्द दूरा महला तीजा हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अनदिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागे हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहिया बहुड़ न मन तन भंग पौड़े कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुना सतगुर बख्श लए सत संगत नाल रलावे जो मीह उठ गलियां नालियां टोबियां का जल जाए पवे विच सुरसरे सुरसरे मिलत पवित्र पावन हो जावे ए वडे आए सतगुर निर्वैर विच जित मिले तिस ना भुख उतरे हर सांत तड़ आवे नानक एहो अचरज देखो मेरे हर सच्चे साका जे सतगुरु नो मन्ने सो सबना मन पावे ए वडियाई सतगुर निर्वैर विच जित मिले तिस ना भुख उतरे हर सा